क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब

इतनी जरूरी है? क्लब मिर्ची, मिर्ची रिचर्ड, मिर्ची ओयोंतिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: कंडीशंस अप्लाई. जय गुरुदेव. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए. अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव में जोड़ायो, जेमा
2: 13 सितंबर रविवार
1: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
3: Inefficient.
4: Very complex.
5: Clumsy. Oh.
6: Confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक. Software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
14: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

मिर्ची और योंतिका आपके साथ वीकेंड रोमांस का भी अपना ही प्रेशर है. कपल्स को डेट प्लान करना है, सिंगल्स को प्रिटेंड करना है दैट दे लव बीइंग सिंगल, और सबको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है. यही तो है सोशल मीडिया, इश्क जैसा कुछ.

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स और फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: कंडीशंस अप्लाई.
3: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
4: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
5: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
4: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
6: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Listener MI, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
14: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
12: On a ride.
15: Club Mirchi.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योमतिका एक साथ। तो वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है। या अली, तोड़ दुश्मन की गली।

हाँ हाँ सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची वन मिर्ची ओंतिका। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: कल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योनिका बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: कंडीशंस अप्लाई.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी.
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.
9: On a ride.

अपनी बैंक बैलेंस को गुप्त ही रखिए क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिकाऊ। प्यार तो मुश्किल है ही और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: में कुछ ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: Don't even bother to explain, he says, because I don't want to hear it. Just get your shit.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: कंडीशंस अप्लाई. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
10: ऑन अ राइड.

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं।

0: I got what you need. Nothing can stop me. I'm all the way up.
1: वीकेंड पार्टी में एनर्जी ऑल द वे अप क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड नाउ हियर कम्स द हॉट स्टेपर.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: कंडीशंस अप्लाई. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है.
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

Welcome back, Club Mirchi जा रही है DJ Richard Mirchi और योंदिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

पार्टी का असली टेस्ट जब फेवरेट सॉन्ग आए और आपका फ्रेंड बोले मैं डांस नहीं करता, 5 seconds later मकड़ा मोड ऑन एंड द फ्लोर इज गोइंग क्रेजी।

0: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना।

क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. वेलकम बैक पीपल. वीकेंड आते ही शेर खुल गए. फ्राइडे तक जो ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, आज डांस फ्लोर पे बोलेंगे हेलो मूव

डांस पसंद थी, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते, कॉन्फिडेंस नहीं, एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका.

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आई ऑन टिका.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

जय जय शिव शंकर अज मूड है भयंकर।

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना।

ही जरूरी है। क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची ओयोंटिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

0: मिर्ची मिर्ची मिर्ची
1: हेलो पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची। वीकेंड आ गया और वीकेंड का मतलब प्लान्स। अब किसी के प्लान्स में गोवा है, किसी के प्लान्स में नाइट क्लब, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड पे क्लब मिर्ची सुनते हैं विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। क्योंकि वीकेंड के लिए भाई क्राउड जरूरी नहीं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मूड और जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्यू आवर्स बस। So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!

नहीं नहीं वीकेंड का प्लान पानी पानी नहीं करेंगे, क्लब मिर्ची सुनेंगे और साथ में झूमेंगे। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

वीकेंड में दो चीजें आसमानी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस और हील्स। बाकी बिल जमी पर ही रहे, वरना मंडे का मूड खराब हो जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन यून टिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

वीकेंड क्रश का भी अलग ही नशा है। फ्राइडे को लगता है दिस कुड बी समथिंग, संडे तक रियलिटी चेक मिल ही जाता है। क्लब मिर्ची विद जी जे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका, वेलकम बैक।

बारिश हो या वीकेंड, मूड तो है ही लेजी। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंते का पार्टी कैंसिल करने का बेस्ट एक्सक्यूज मिल गया। एंजॉय करे एक साथ लेजी लम्हे।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है।

0: हम तो हका ना ही बोला है बाकी जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है मिर्ची की तरफ से देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे सही है
1: मिर्ची
2: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो।

मिर्चियों योंतिका आपके साथ वीकेंड रोमांस का भी अपना ही प्रेशर है. कपल्स को डेट प्लान करना है, सिंगल्स को प्रिटेंड करना है दैट दे लव बीइंग सिंगल, और सबको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है. यही तो है सोशल मीडिया, इश्क जैसा कुछ.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब

वाली जरूरी है। क्लब मिर्ची, मिर्ची जे रिचर्ड, मिर्ची ओयोंतिका। बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना।

भी जरूरी है। क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स और फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ। तो वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है। या अली, तोड़ दुश्मन की गली।

हाँ हाँ सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: सेकंड में दिल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

अपनी बैंक बैलेंस को गुप्त ही रखिए। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिकाओ। प्यार तो मुश्किल है ही, और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके

बेबी पर क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंते का वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: कुछ ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: डोंट इवन बदर एक्सप्लेन, ही सेज, cuz आई डोंट वांट टू हियर इट. जस्ट गेट यस.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट,
5: लेडीज एंड जेंटलमैन।

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है बच्ची जे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

वेलकम बैक क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतुराज। Only on Mirchi, it's hot.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: Radio Mirchi, it's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
7: on a ride.

करण मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। वीकेंड आते ही शेर खुल गए। फ्राइडे तक जो ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, आज डांस फ्लोर पे बोलेंगे हेलो मूव प्लीज।

डांस बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब

इतनी जरूरी है क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट, 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।
3: Ladies and gentlemen,

डी जो रिचर्ड एंड मिर्ची ऑनटिका स्टार्टिंग योर वीकेंड। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए। दैट इज क्लब मिर्ची। हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर इज द साइन ऑफ ट्रैक। इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन। टाटा।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। भीरू यह शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टीचर्स के लिए ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी क्या कहती हैं?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: नमस्कार, आज बहुत आई थिंक सौभाग्य का दिन है। हमने एक बीज बोया था बहुत सालों पहले, बहुत सालों तो नहीं, 1.5 साल पहले, और उसका शायद फल आज हमें मिल रहा है कि हमारे सौभाग्य की सिस्टर शिवानी आज हमारे साथ हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर शिवानी।
2: शुक्रिया, ओम शांति।
3: सिस्टर, मेरे मन में ना बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल करते रहते हैं, तो आज मैं, क्योंकि मौका मिला है, तो मैं विदाउट पुटिंग एनी बैकग्राउंड मैं ऐसे ही पूछने वाला हूँ आपसे। तो पहले ही माफी मांग रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये ऊटपटांग से सवाल है तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा और अपने हिसाब से बताइएगा। सिस्टर, टीचर्स डे पे मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ, स्कूल में बहुत सारी चीजें होती थी। मुझे आपसे पूछना है कि आप, आज ऐसा मौका मिलता है कि शायद कई लोगों का आप मार्गदर्शन करती हैं, आपके लिए वो कौन सी एक महिला है, इंसान है, जो भी है, जिनको अपना गुरु मानते हैं, वो कौन सा गुरु मंत्र उन्होंने दिया था जो आपने हमेशा याद रखा है?
4: हर एक बच्चे की लाइफ में फर्स्ट वुमन विल बी द मदर।
3: बिल्कुल।
4: एंड इस राजयोग मेडिटेशन को सीखना, इस ज्ञान को समझना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था।
3: अच्छा।
4: तो मैं काफी उससे दूर दूर रहती थी, मुझे जरूरत नहीं लगती थी उसकी, बट मेरी मदर ने शुरू किया। तो उन्होंने ऑब्वियसली, यू नो, पेरेंट फिर ऑब्वियसली चाहेगा कि बच्चा भी वो सीखे जिसमें उसका फायदा है।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 30 years back, जरूरत ही नहीं लगती थी, लाइफ परफेक्ट थी। अगर आप अकेडेमिक्स में अच्छा कर रहे हो तो आपकी जीवन सेट है, आपको कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेस वर्ड ही नहीं पता था हमारे को, तो फिर मेडिटेशन की क्या जरूरत। तो द मोर शी वुड पुश मी, द मोर आई वुड मूव अवे, बट आई हैव सीन कि वो पर्सिस्टेंस, एंड उन्होंने फिर बोलना बंद कर दिया। सो नाउ आई लर्न्ड यू कैन बी अ टीचर लाइक दैट आल्सो। क्या बोलना बंद कर देते हैं आप, कुछ कहना बंद कर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक अच्छी प्योर इंटेंशन रखते हैं ना, तो वो इंटेंशन मैजिकल रिजल्ट लेकर आती है। सो ऑफ कोर्स फिर हम, वंस आई केम टू द ब्रह्म कुमारीज, आई मेट सो मेनी सिस्टर्स, एवरीवन हैज टॉट मी सो मच, लेकिन जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो निमित वही है। सो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हर फॉर दैट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या गुस्से में भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि कभी कभी ना हम बोलना बंद कर देते हैं और शांत हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं है अक्सर। लेकिन हम ये जो बोलना बंद करते हैं वो गुस्से में करते हैं कि कोई बोलने का फायदा नहीं है, उसको बोलते हैं सुनते ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। लेकिन आपकी मम्मी ने बोलना बंद किया लेकिन शायद बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजती रही आज तक।
3: वो तो अब समझ में आता है ना, तब ये समझ में नहीं आता था कि बिना बोले भी कुछ हो सकता है, बिना कहे भी अपनी सोच दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो घर में खाना बनाती थी तो जो उनकी सोच है वो खाने के थ्रू, भोजन के थ्रू भी हमारे ऊपर असर करती है। तो उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की एंड मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मैं, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। लेकिन आज सारे हैं उस जर्नी के ऊपर, बिकॉज शी वाज कुकिंग। तो वो खाना बनाते समय जो मन की स्थिति होती है और जो एक प्योर इंटेंशन है बच्चे के लिए, वो सब काम करता है विदाउट सेइंग एनीथिंग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जैसा अन्न वैसा मन, क्या हमारे खाने का असर हमारे माइंड पर भी पड़ता है?
4: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
3: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
5: खाने के बारे में मैं देखता हूँ कि आप कई बार कई जोर देते हैं और खाने पे बहुत आपका महत्व रहता है कि किस इंटेंशन से बनाए, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन आम जगहों पर, मैं रेस्टोरेंट और होटल्स की बात नहीं कर रहा, बाहर की जगह की बात नहीं कर रहा, घरों की बात कर रहा हूँ, आजकल बहुत बार खाना जब बनता है तो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं या हम शायद मोबाइल देखते वक्त ही खाना बना रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको क्या कहें कि भाई जब आप ये करें तो क्या स्थिति रहेगा, क्या सोचें आप?
6: उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि खाना बनाना जो सामने वाला खाएगा वो उसकी बॉडी के हेल्थ के लिए है।
5: हाँ।
6: तो हम फोन पे बात भी कर सकते हैं, हम टीवी भी दूसरे रूम में ऑन रख सकते हैं, हम फोन पे कुछ सुन भी सकते हैं और हम खाना बना सकते हैं, वो खाना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा क्योंकि हमारे लिए खाना बनाना वॉज अ डूइंग, कुछ करना है, मुझे खाना बनाना है, तो हम परफेक्ट खाना बना सकते हैं। हम परेशान मन से भी, दुखी उदास मन से भी, रोते हुए भी परफेक्ट खाना बना सकते हैं।
5: बिल्कुल।
6: मतलब वो रेसिपी हमें आती है ना, वो तो आप आधी रात को भी नींद में उठाओगे घर की मदर को तो वो बना लेंगी। एंड दे वर राइट, क्योंकि वो डूइंग का था। लेकिन अब हमें समझ में आता है जो भारत की संस्कृति में हजारों साल से है कि इट इज जैसा अन्न वैसा मन, इट इज नॉट जैसा अन्न वैसा तन।
5: बिल्कुल,
6: है ना। तो हम तो बॉडी के लिए खाना बना रहे थे, तो बॉडी के लिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप कुछ भी सोच रहे हैं डजेंट मैटर, आपकी रेसिपी परफेक्ट होनी चाहिए और आपकी सब्जी वो परफेक्ट बननी चाहिए।
5: बिल्कुल।
6: लेकिन अब जब समझ में आता है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो दूसरी लाइन ये भी है, जैसा मन वैसा अन्न।
5: अच्छा, जैसा मन वैसा।
6: हाँ, मतलब बनाने वाले का मन,
5: स्थिति जो हो,
6: बनाने वाले का जो मन है, तो बेसिकली एनर्जी वाइब्रेशन की बात हो रही है। सो इवन अगर चलो हम उतना नहीं सोचें, अगर कोई बहुत प्यार से खाना बनाता है ना, जिसको लाइक बहुत अच्छा लगता है किसी के लिए खाना बनाना उसको, तो उसकी वो वाइब्रेशन ऑफ प्यार, वो दैट इंटेंशन, खाने वाला ज्यादा खा जाता है।
5: हाँ, बिल्कुल,
6: है ना, ज्यादा खा जाता है। एक और भी कोई हो सकता है जो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाएगा पर उसका मन नहीं था खाना बनाने के लिए,
5: तो एक में पेट भर जाता है,
6: बेमन से बनाया हुआ खाना, परफेक्ट रेसिपी फिर भी होगी। तो वो हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो हमें तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं अभी ऐसे कि बनाने वाले की सोच, बनाने वाले की मन की स्थिति सीधा अन्न पर असर करती है और वो अन्न खाने वाले के मन पर असर करता है और फिर खाने वाले का मन खाने वाले के तन पर असर करता है। सो इट इज अन्न से मन, फिर मन से तन। हम ये कहते हैं कि भले रेसिपी ठीक ना हो, भले एक सिंपल सी खिचड़ी बना देना, कुछ हमें चार चीजें नहीं चाहिए, लेकिन वो बनाने बहुत अच्छे मन की स्थिति के लिए,
5: खुशी खुशी बना,
6: तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है।
5: वाह, क्या बात।
6: क्योंकि हमें पता है चार चीजें खाने से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश मन से बनाई हुई एक खिचड़ी भी खाई तो उससे खुशी भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी मिलेगा। अगर कोई खाना डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड से बनाया है लेकिन परफेक्ट खाना बना है, लेकिन उसकी करंट जो है एनर्जी वो डिस्टर्ब्ड है, तो वो बॉडी को भी हेल्थ नहीं दे सकते। चलो मन को तो नहीं सुकून देगी, लेकिन वो शरीर को भी स्वास्थ्य नहीं देगी, क्योंकि जब वो अंदर जा रहा है वो एक एनर्जी के साथ जा रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, आज मेरे साथ ऑफिस में ये हो गया या और कुछ नहीं तो मैं इतनी थकी हुई हूँ, हमेशा मुझे ही सारा काम करना पड़ता है,
5: तो खाने वाले को भी महसूस होगा,
6: खाने वाले के शरीर पर भी असर करेगा। जब हम कहते हैं ना मेजोरिटी ऑफ आर डिजीजेज आर लाइफस्टाइल, तो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हम तो परफेक्ट डाइट खा रहे हैं, डॉक्टर ने लिखा ये हम बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या खा रहे हैं उससे नहीं होगा, कौन बना रहा है, किस मन की स्थिति में बना रहा है, फिर जो खा रहा है वो किस मन की स्थिति में खा रहा है, वो सारे फैक्टर्स मिला के फिर शरीर की हेल्थ बनेगी।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: HD Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: खाना बनाते और खाते वक्त पीस ऑफ माइंड क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: खाने के बारे में मैं देखता हूँ कि आप कई बार कई जोर देते हैं और खाने पे बहुत आपका महत्व रहता है कि किस इंटेंशन से बना है, वो बहुत जरूरी होता है।
3: तो सिर्फ क्या खा रहे हैं नहीं, क्या खा रहे हैं लेकिन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, और फिर अगर सब बनाने वाले ने सब परफेक्ट कर लिया लेकिन खाने वाला ही टीवी देख के साथ खाना खा रहा है,
2: वो भी जरूरी।
3: अब उसमें वो चाहे दुनिया की खबरें देख रहा है या कोई सीरियल देख रहा है,
2: क्राइम शो देख रहे हैं,
3: अच्छा कुछ नहीं तो आप एक मैच ही अगर देख रहे हो, ओके उसमें कोई नेगेटिव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपका माइंड कितना उथल पुथल करता है एक मैच देखते हुए भी, दैट्स नॉट गुड। आप खाना अंदर डाल रहे हैं, इट हैज टू गो विद पीस, शांति। तो इवन अगर आप सोचो हम तो मैच देख रहे हैं, कोई क्राइम नहीं, कोई नेगेटिव, बट उसमें बहुत फ्लक्चुएशन आता है। खाना हमेशा शांति से खाना है, इसलिए बचपन से सीखा था, शुरू करने से पहले रुको, उसको याद करो परमात्मा को, या कोई भी हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करो। क्यों थॉट क्रिएट करो हाई, अभी तो खाना खाना है, क्योंकि जब आप हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करेंगे आपका माइंड एकदम पावरफुल साइलेंट हो जाएगा, वो हाई एनर्जी थॉट आपके शरीर को मिलेगी, आपका शरीर भी सेटल्ड हो जाएगा, फिर वो हाई एनर्जी थॉट वो अन को मिलेगी, फिर वो अन उस हाई एनर्जी के साथ अंदर जाएगा। तो मन और तन दोनों के लिए क्या खा रहे हैं से ज्यादा कैसे खा रहे हैं और कैसे बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 100 तारीफों के बीच एक क्रिटिसिज्म ही हमें क्यों याद रह जाता है, आइए इस माइंडसेट को समझें मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और लेट्स से मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, बोलते हैं अरे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और कोई एक उनमें से हो गया जो बोलेंगे यार तुम्हारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम यार ये बहुत करते हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, कुछ क्रिटिसाइज उसने कर दिया। अब 90 लोगों ने बहुत अच्छा बोला लेकिन एक ने कुछ गलत बोला, ऐसा क्यों होता है कि जब मैं वापस घर जाता हूँ वो एक चीज मेरे दिमाग में बार बार चलती रहती है और मैं सोचता हूँ यार उसने ऐसा बोल दिया। मैं 90 लोगों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ कि यार 90 लोगों को फर्क पड़ा, अच्छा लगा उनको। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ ज्यादा क्यों भागता है?
3: 100 लोग हैं, 90 लोगों ने आपको एक गिफ्ट दिया
2: जी,
3: लेकिन जो वो एक था उसने ऐसा हैमर मारा तो चोट लगी।
2: हाँ।
3: तो चोट लगी तो वो चोट दर्द हो रही है, दर्द को आपने ठीक नहीं किया है।
2: हाँ।
3: अगर आप दर्द को ठीक कर देंगे तो वो हैमर भी भूल जाएगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ चोट लगी है और वो दर्द हो रहा है तो मुझे चोट मारने वाला याद आएगा ना, जितनी देर वो दर्द होगा, तो वो सिर्फ उस दिन नहीं याद आएगा, वो हफ्ते भी याद आएगा, अगली बार दिखेगा तो भी चोट याद आएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो मिल रही है क्रिटिसिज्म, उसी टाइम अगर हम उसको हील कर लेंगे ना तो वो घाव नहीं बनेगा, और हम सिर्फ घाव बनने नहीं देते, हम उस घाव को बार बार रिपीट भी करते हैं। तो वो घाव क्या होता है, सिर्फ माइंड में नहीं करते, हम किसी से बात भी करते, हम कहते हैं पता है उसको क्या आता है, कुछ आता तो है नहीं, आके अपना देख के चला गया,
2: मैंने ये किया वो ऐसा बोल
3: फिर
2: रहा
3: सामने
2: है।
3: वाला उस पे और आपको एंडोर्स करता है, हाँ वो तो है ही ऐसा, तो हम अपने को और अलाउ करते हैं, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमेशा हमें याद रखना है सामने वाला जो कह रहा है वो उसका नजरिया है और उनका नजरिया उनके संस्कारों से बनता है
2: जी।
3: और हर सोल की लंबी जर्नी है तो अलग अलग संस्कार है, वो रोल कोई भी प्ले कर सकते हैं आपके ऑफिस में, लेट से कोई आपका सीनियर है या कोई आपका जूनियर है, रोल अलग अलग है लेकिन डिफरेंट जर्नी डिफरेंट संस्कार। तो जब आपको कोई अप्रिसिएशन देना तब याद रखना कि मेरे बारे में नहीं है, ये इनके प्यारे प्यारे संस्कार हैं जो ऐसा बोल रहे हैं,
2: प्यारे प्यारे,
3: हाँ प्यारे है ना, वो अच्छा दिख रहे हैं, वो अच्छा बोल पा रहे हैं आपको।
2: हाँ।
3: कि उनके अच्छे संस्कार है ना, इसलिए वो कर पा रहे हैं।
2: हाँ।
3: और अगर कोई ऑपोजिट देगा तब भी याद रखना इट्स नॉट अबाउट मी, ये उनका संस्कार है, थोड़ा सा कड़वाहट भरी है मन के अंदर, कोई चोट लगी होगी कभी, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। जिसको अगर किसी को वायरल होता है ना तो उसको मीठी खीर भी अच्छी नहीं लगती है।
2: बिल्कुल,
3: अगर मेरे पास वो संस्कार है ना, वो चाहे कभी भी बना हो वो संस्कार, तो आप बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट हो सकते हैं।
2: हाँ।
3: लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर गलती दिखाई देगी, नॉट बिकॉज आप गलत हैं, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार है। तो प्रैक्टिस निंदा में नहीं करनी है, प्रैक्टिस स्तुति में करनी है,
2: अच्छा
3: अप्रिसिएशन में करनी है।
2: बिल्कुल,
3: तो पुराने जमाने में वो घड़ी थी ना जो पेंडुलम ऐसे घूमता
2: हाँ,
3: था
2: बिल्कुल।
3: तो मेडिटेशन हमें सिखाता है पेंडुलम को बस सेंटर में रखना।
2: हाँ।
3: जब अप्रिसिएशन मिले तब भी सेंटर में रखना।
2: हाँ।
3: अगर अप्रिसिएशन में सेंटर में रख लिया तो क्रिटिसिज्म में सेंटर में रहेगा वो
2: जी।
3: लेकिन अगर अप्रिसिएशन में वो 60 डिग्रीज इस तरफ गया टू द लेफ्ट, तो वो क्रिटिसिज्म में 60 डिग्रीज टू द राइट जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
8: निहाल सिंह नो बंगाली कुड़ी नाल किवें होया प्यार?
9: गर्लफ्रेंड
8: की निहाल बंगाली कुड़ी की सच्चाई फड़ पाएगा? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैलिडेशन से ज्यादा इनर इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई अप्रिशिएट करता है हमको बड़ा अच्छा लगता है।
3: हाँ, तो फिर आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली ना दूसरों के शब्दों के ऊपर। जो अप्रिशिएट करे उसको प्यार से शुक्रिया दुआएं, लेकिन याद रखना ये उनका संस्कार है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई मन में आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है
2: लेकिन बोल में कर रहा है,
3: शब्दों में कर रहा है, तो वो भी हमें पता नहीं। लेकिन हम कितना किसी की भी वाहवाही लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं। हमें खुद खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए
2: जी।
3: हमें खुद डिटैच्ड होकर अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि कैसा था वो प्रेजेंटेशन या, और फिर जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका आप फीडबैक ले लीजिए। फीडबैक आपके लिए है, क्रिटिसिज्म उनका संस्कार है,
2: वो बहुत जरूरी है, ये इनको सेपरेट करें।
3: लेकिन जब हम वो क्रिटिसाइज करके फीडबैक देते हैं ना,
2: हाँ।
3: तो हम फीडबैक भी नहीं लेते हैं क्योंकि हम क्रिटिसिज्म से ही हर्ट होते हैं। तो सपोज मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, वो गिफ्ट बहुत रियली वैल्यूएबल है आपके लिए, लेकिन मेरा देने का तरीका ठीक नहीं था। मैं आपके पास आई और मैंने कहा ये लो, तो वो मैंने दिया इतना गलत तरीके से कि आपने गिफ्ट खोल के ही नहीं देखा।
2: सही बात।
3: दिस इज व्हाट हैपेंस स्पेशली इन एन ऑफिस।
2: यस।
3: यू नो सामने वाला बहुत आपके फायदे के लिए कोई आपको बात कहता है, लेकिन अगर उसका मन परेशान है, अगर कोई कड़वाहट भरी हुई है, तो उसका कहने का तरीका उतना रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। तो तरीका उनका है, फीडबैक हमारे लिए है। तो सेपरेट द फीडबैक फ्रॉम द संस्कार ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फिर आप फीडबैक को नहीं खोएं क्योंकि वो मेरी गिफ्ट थी, देने का तरीका उनका संस्कार।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रंग रेजा, रंग रेजा।

0: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप भी नो नहीं बोल पाते? तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है. आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ.
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं. हमारे ऑफिस में एक बहुत सीनियर बंदे हैं और वो मुंह पे हमेशा हाँ बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके बिल्कुल उसका उल्टा. सीनियर बंदे हैं, उनसे बहुत बार फीडबैक उनको दे दिया गया इस बारे में. और शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनको परे कर सकते हैं, और सारी चीजों के बीच में भी बात. ऐसे लोगों से क्या करें? क्योंकि कई बार जब मैं सोचता हूँ कि चलो उनका संस्कार, उनको फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मुझे भी अपना काम करना है, उनके साथ मेरे डिपार्टमेंट को काम करना है. ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए?
3: वो ना नहीं बोल पाते, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं.
2: अच्छा.
3: क्योंकि बहुत लोग ना नहीं बोल पाते हैं और बहुत लोग ना सुन नहीं पाते हैं.
2: हाँ.
3: है ना, कुछ लोग ना सुन के भी ऑफेंड हो जाते हैं.
2: हाँ.
3: कुछ लोग ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो दूसरे को ऑफेंड नहीं करना चाहते.
2: बिल्कुल.
3: एंड दिस इज अ संस्कार ऑफ सीकिंग वैलिडेशन. अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए ना बोला, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ना बोला, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपके अनुसार मैं अच्छी नहीं हूँ. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. तो इसीलिए भले मुझे वो ना लगता है, लेकिन मैं अच्छी हूँ ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको हाँ बोलती हूँ. वो आपके लिए है ही नहीं एक्चुअली, वो मेरी नीड है ऑफ वैलिडेशन. तो ये सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक से एक अच्छी वो क्रिएट करना चाहते हैं. और उसमें उनकी गलती नहीं होती है, ये कभी कभी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो गई होती है. मोस्ट केसेस में इट इज अ चाइल्ड.
2: Okay.
3: एक बच्चा है.
2: हाँ.
3: जिसका पेरेंट या
2: हाँ.
3: जिसका टीचर बहुत क्रिटिकल या बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत डिफिकल्ट टू प्लीज.
2: हाँ.
3: जिसको आप खुशी नहीं कर सकते हो. आप कितना भी परफॉर्म कर लो, आप 99/100 लिया, वो बोलेगा लेकिन
2: हाँ.
3: आपका ये एक नंबर नहीं है. जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अभी तक वो सीख कर रहा है कि कब एक दिन
2: कोई अप्रिशिएट
3: वो मेरा पेरेंट या वो मेरा टीचर कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो. तो वो जो सीकिंग का संस्कार है ना, वो बहुत पुराना होता है. और वो इतना पुराना होता है कि हमको भी नहीं पता हमारा वो संस्कार कैसे बन गया है, लेकिन हम आज भी वो सीकिंग के मूड में हैं कि लोग मुझे कहें कि मैं अच्छी. वो बहुत डीप प्रोग्रामिंग होती है. तो वो अभी नहीं समझेंगे, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि ये उनका संस्कार है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: कंडीशंस अप्लाई.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? Mirchi Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi. It's hot.

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वर्कप्लेस में ओपन कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप चलाते हैं तो सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलता, हमको काम भी करवाना है।
3: आप उनसे ओपनली बोल सकते हैं कि हम तो रेडी है। आप बताओ अगर ये गलत है तो हम अभी छोड़ देते हैं इसको। हम अभी इसको चेंज, गिव द पर्सन दैट थिंग कि आप सेम रहेंगे दिस वे और दैट वे। अगर आपने हमें अच्छा बोला या राइट बोला तो भी हम ठीक हैं। अगर आपने बोला कि हमने जो गलत किया उसको पूरा बदलना, हम भी ठीक। आप उनको ना, हम रोल को देखते हैं ना, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है ये करना। ओ ये तो इतने बड़े हैं, इनको हम ऐसे क्यों बात करें। हम रोल को नहीं देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं। और हमें दिखता है कि ये छोटा सा बच्चा अभी तक वो घाव लेके चल रहा है, तो बस उसको उस नजरिए से देखकर एक तब ओपनली बोल दो कि आई एम परफेक्टली ओपन, आप बस मुझे बता दो कौन सी गलतियां। तो सामने वाले को शक्ति देनी पड़ेगी कि वो हिम्मत कर सके आपको डिसप्लीज करने के लिए, बाय अश्योरिंग हिम कि हम ऑफेंड नहीं होंगे, हमारी रिस्पेक्ट आपके लिए अभी भी उतनी है, आप हमारी गलतियां निकालोगे तभी भी उतनी ही है, आप हमें गलत कहोगे तो भी उतनी है। ये अश्योरेंस उस बच्चे को नहीं मिली थी। तो जब हमें दूसरों के संस्कार और मन की स्थिति समझ में आती है ना, भले वो हमारे रोल में सीनियर होंगे लेकिन मन अभी भी वो बच्चे का ही है, तो वो मन को अश्योरेंस दे दो कि वी आर एब्सोल्युटली ओपन, कि आप फीडबैक दो, आप गलतियां निकालो और हम आपके साथ ही बैठ के इसको करेक्ट करेंगे। एक बार दो बार, इट्स लाइक किसी को पानी से डर लगता है, तो वो डरता है ना, कब भी कुछ हुआ होगा। उसको बहुत धीरे से पानी के पास लेके जाना पड़ता है, एक नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है आत्मा पर कि पानी इज कम्फर्टेबल, लिफ्ट इज कम्फर्टेबल। कभी कुछ हो गया तो लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कभी कुछ हुआ तो फ्लाइट में। ऐसे ही करेक्शन देने से डर लगता है क्योंकि मुझे ना नहीं सुना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कॉर्पोरेट दुनिया में ढाल क्या है और क्या हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस ढाल का इस्तेमाल करते हैं? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: कभी कभी सिस्टर क्या होता है, कुछ लोग ढाल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने एक बात की कि चलो कोई बच्चा बचपन में शायद बहुत एक परफेक्शनिस्ट बाप या गुरु के साथ पला बड़ा है, तो इसलिए उसको वैलिडेशन चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, सीनियर होते हैं एक्सेट्रा, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, और जैसे उनको ईमेल का ढाल मिल जाता है ना, फिर वो बोलते हैं नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा, वो बहुत जो वर्ड्स भी यूज करते हैं वो डरने वाले नहीं है, वीक वाले नहीं है, वो है कि भैया मुझे लगता है हमको ऐसा करना है, फिर आपको लगता है लेकिन हमने अग्री तो ये किया था, हाँ हमने अग्री किया था लेकिन ये सही नहीं है। सो दे आर नॉट इवन सेइंग कि हमने अग्री नहीं किया था, वो कह रहे हैं हमने किया था लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। और रेगुलरली जब हो तब कैसे हैंडल करें?
3: लैक ऑफ क्लैरिटी है ना थिंकिंग के अंदर, क्लैरिटी नहीं है थिंकिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग की शक्ति नहीं है, तो उसको हम कहेंगे फिकल माइंड, मतलब चेंज होता रहेगा ना बहुत बार मन, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर सर्टेनिटी भी नहीं है, फेथ भी नहीं है कि ये राइट होगा, तो दिस इज अ साइन ऑफ अ लिटिल, थोड़ा सा कमजोर मन है, वो मन को शक नहीं, आपको उनके साथ तो काम ऑब्वियसली करते ही जाना है, बट ये भी हो सकता है कि जो डिसीजन लिया था कल उसको फटाफट से राइटिंग में डाल देना चाहिए। अब सपोज मेरी आज आपसे कोई बात हो रही है और मुझे पता है ये कल ना चेंज हो जाएगी, तो फिर मैं आज उसको राइटिंग में डाल के कि आज हमने ये डिस्कस किया था, इवन विद फैमिली, ये जरूरी नहीं है वर्क प्लेस पे होता है, कोई भी हो सकता है ना कहीं पे, तो अपना फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना उस पे डाल देना आज हमने ये डिस्कस किया 1 2 3 4, तो सामने वाला जानबूझ के भी कई बार नहीं करता है, उसकी थॉट चेंज हो गई है अगले दिन या उसको फेथ नहीं है उस डिसीजन के अंदर, एंड इट डजंट मैटर कि हम चेंज करें अगली बार, लेकिन अगर वो हर बार हो रहा है तो then it's not about what we are doing, it's about my संस्कार। इसीलिए लिखत में रखना सामने वाले के लिए भी अच्छा होता है कि ये मेरी कल की थॉट थी और ये सबने एक्सेप्ट किया। एक बार, दो बार, 10 बार करेंगे, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: This cold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
11: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन्स ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
12: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
11: Wait, they can see us on Sunday?
12: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
13: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
9: यार, इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
14: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
15: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
16: संडे सितंबर 27th 4 PM, जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
20: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
19: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
20: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
19: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
21: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: स्पिरिचुअलिटी में एम्पैथी का क्या रोल है और दूसरों को समझना हमारे इनर ग्रोथ का हिस्सा कैसे बन सकता है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, जब मैं आपसे बात करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हर चीज का बहुत सिंपल सोल्यूशन है। हम इतने वर्क अप क्यों हो जाते हैं? हमको लगता है वो बदमाश है, वो करना नहीं चाहता, वो मुझे पसंद नहीं करता। आपसे जब बात करता हूँ तो आप बोलते हैं यार ये ऐसा है, अब लगता हाँ ये कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्यों नहीं कर पाते?
3: जो भी आपको कुछ परफेक्ट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, हम सब लोग कुछ कुछ चीजें परफेक्ट नहीं कर रहे ना, वो हमारे अपने संस्कार है। कोई जान पूछ के गलत नहीं करता है, कोई डेलिब्रेटली किसी को तंग करने के लिए गलत नहीं करता है। अगर आज कोई किसी पे जोर से चिल्ला रहा है, वो अपना दर्द बाहर निकाल रहा है, वो खुद उसके ऊपर घाव लगा हुआ है, उसका अंदर का कोई बहुत डीप वैक्यूम है। लेकिन जो वो चिल्लाना या डांट सुन रहा है, उसको ये नहीं लगता कि सामने वाले के अंदर कोई दर्द है। कहता है आप मेरे दर्द का कारण हो। तो हम हमेशा लोगों को ऐसे लेते हैं कि यू आर डूइंग दिस टू मी, आप मेरे दर्द का कारण हो, आप मुझे तंग कर रहे हो, आप मुझे डोमिनेट कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है उनके बारे में सोचो पहले, एम्पैथी, कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं
2: जी।
3: तो उनके माइंड में घुस के चेक करो कि ये कौन सा संस्कार होगा जिसकी वजह से ये इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव मतलब अनकंफर्टेबल, हमारी कोई ना कोई पुरानी कमजोरी ही है। तो सामने वाला हमें नहीं तंग कर रहा है, वो खुद से बहुत तंग है। अगर हम दोनों हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, आप लेफ्ट हैंड पे उनको रखें जो कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनकी शक्ति थोड़ी सी कम है,
2: ठीक है।
3: लेकिन हम उनके उस व्यवहार से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना जब, तो फिर हमारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है।
2: बिल्कुल।
3: अब जैसे ही हमारी भी एनर्जी डाउन होगी और हम उनको ब्लेम करेंगे उसके लिए, इनकी वजह से मेरा मन डिस्टर्ब है, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी उनको जाएगी, वो और डाउन जाएंगे, और डाउन जाएंगे। हमें यहाँ होने की जरूरत है, हमें ऊपर होने की जरूरत है, हमें उनको शक्ति देनी है, हमें उनके संस्कार की वजह से अपनी शक्ति घटानी नहीं है। और सबसे पहले उसके लिए बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है कि वो गलत कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी मन की स्थिति को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। वहां कोई किसी की एंट्री नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। इतना याद आएगा, आई टेल यू स्मॉल एग्जांपल। एक नर्सेस का प्रोग्राम था, सब नर्सेस थे, उनको कहा, उनका टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट था, उनको पूछा क्या कॉज ऑफ स्ट्रेस। मुझे लगा इतने सारे रीजंस होते हैं नर्स के पूरे दिन के अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं, जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा वो कोई रीजन है स्ट्रेस का, पेशेंट इतना गुस्सा करते हैं? तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, सिस्टर उनका ना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। परफेक्ट। तो मैंने कहा कल जब वो डॉक्टर आपको गुस्सा करेंगे, आप मन में एक थॉट क्रिएट करना, वो बीमार है। तो उन्होंने कहा बट वो तो बीमार नहीं है। मैंने कहा इमोशनली तो बीमार है ना, तभी तो कड़वा बोल रहे हैं ना, तो बीमार है। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन उनको इतना परफेक्ट चाहिए होता है ओटी में कि कुछ भी, इंटेंशन बहुत अच्छी है लेकिन तरीका। शीजर आज फिर से आके उन्होंने जोर से चिल्लाया और मैंने फर्स्ट थॉट क्रिएट की, वो बीमार है। शीजर मैं ठीक रही, क्योंकि अभी तक मैं बोलती थी इतनी मेहनत की, आए और मुझ पर चिल्लाया। यू नो, हम अपने पे ले लेते हैं। बट ब्यूटिफुल थॉट था उनका सेकेंड वाला।
2: क्या बात?
3: उसके बाद मैंने थॉट क्रिएट की मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ।
2: वाह।
3: जब आप पेन कंज्यूम नहीं करेंगे ना दूसरे का, और आप खुद पेन नहीं क्रिएट करेंगे, आप दूसरे को शक्ति देने वाले बन जाते हैं। दैट्स एम्पैथी। तो लेकिन हम सबका अपने पे ले लेते हैं, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे, और हम सबकी वजह से अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और फिर हमारे से भी उनको वो नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो हम सब एक दूसरे को एक्चुअली डिप्लीट करते जाते हैं, हम एक दूसरे को एनर्जाइज कर रहे हैं।
0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: Inefficient,
12: very complex,
13: clumsy,
14: confusion ही confusion।
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR। काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
15: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
16: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
17: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
18: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
19: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
18: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
20: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।

0: चार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: Brahma Kumari, Sister Shivani, क्यों कहती है कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहिए?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: आपने बीच में एक बात कही और मैंने आपको एक वीडियो भी देखा था जहां आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दो। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी बिकॉज बड़े संक्षेप में आपने बहुत खूबसूरत सी बात कह दी। तो ज्यादातर हम बहुत सारी चीजें करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को, इंसान को। ये जो खूबसूरत जो आपने बात कही कि दूसरों को रिमोट कंट्रोल मत दो, ये एमिनेट कहाँ से होता है और ये करना कैसे है?
4: एक्चुअली रिमोट कंट्रोल है ही नहीं किसी और के हाथ में। कोई मुझे तंग कर सकता है
3: जी।
4: कोई मेरे साथ झूठ बोल सकता है।
3: हाँ।
4: कोई मुझे धोखा भी दे सकता है, कोई मुझे एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। ये पावर दूसरों के पास है, लेकिन कोई मेरे मन में घुस के मेरी सोच नहीं बना सकता है। वहां कोई नहीं, कोई मुझे फिजिकली भी हिट कर सकता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में घुस के कोई मेरी सोच नहीं बना सकता है। लेकिन ये हमको बचपन से किसी ने सिखाया नहीं, तो हमारी वोकैबुलरी बन गई। उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपसेट किया, उन्होंने मुझे गुस्सा किया, उन्होंने ये किया, हमने सब कुछ उन पर डाला। तो ऐसे करते करते हमारा माइंड सिचुएशन और लोगों के बिहेवियर पर डिपेंडेंट होने लगा, ये हमें लगा, क्योंकि हमने अपने माइंड की पोटेंशियल को यूज ही नहीं किया। हमने कहा उन्होंने गुस्सा किया, बुरा तो लगना ही था। अच्छा नहीं लगता तो चार लोग आसपास बोलते तुम्हें बुरा नहीं लगा, उन्होंने कितना गुस्सा किया। ये हमारी कंडीशनिंग हो गई। बट एक्चुअली आंख बंद करो, लास्ट टाइम देखो किसी ने आपको गुस्सा किया या आपने किसी को किया, आपके पास 5 ऑप्शन है आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे। आप चुप रह सकते थे, आप प्यार से जवाब दे सकते थे, कुछ नहीं तो आप कमरे से, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो ऑप्शंस कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग द ऑप्शन। हम ऑप्शन सोचते ही नहीं क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया। लोग हमें तंग कर सकते हैं, फिजिकली भी तंग कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, मन में कोई नहीं घुस सकता है। तो रिमोट कंट्रोल देने का मतलब ही नहीं है। रिमोट कंट्रोल है ही नहीं किसी के पास। एक्चुअली हमारी ये भाषा है जो हम इसको रिपीट रिपीट रिपीट करते रहते हैं। एक बहन आई सेंटर पर 40 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। जब वो 5 साल का बच्चा थी तो उसके पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ उस 5 साल की लड़की को छोड़ा। वहां कुछ गलत हुआ बहुत। तो जब वो आए वापस, वो 5 साल का बच्चा नहीं समझता बात को, तो वो 5 साल के बच्चे ने पेरेंट के अगेंस्ट होल्ड कर लिया कि मेरे पेरेंट ने वहां छोड़ा है ना। तो उसका पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं रहा। And because of what happened, उसके अंदर इतनी कड़वाहट भरी about the world, उसने कोई रिश्ते नहीं जोड़े, लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया, बस अकेले अकेले अकेले, the world is not nice. ऐसे 35 साल बीत गए। तो एक दिन वो मेडिटेशन रूम में बैठी थी और बाहर आई, एंड आई एम गिविंग यू हर एग्जैक्ट वर्ड्स, शी सेड, सिस्टर उस व्यक्ति ने जो किया उसने मेरे शरीर को अब्यूज किया एक बार 35 साल पहले। मैं 35 साल से अपने आप को अब्यूज कर रही हूँ और आज I let that person go. Life changed after that. उसका अपना पेरेंट्स के साथ रिश्ता चेंज हो गया, उसका खुद की बॉडी के साथ रिश्ता चेंज हो गया, उसका everything changes. तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने वो किया वो गलत नहीं था। वो तो गलत था ही, उस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, लेकिन हम मन पर उसको कितना पकड़े, कैसे पकड़े, उसकी वजह से हम खुद के साथ गलत करते। तो खुद से प्यार करना सीखें, खुद का ध्यान रखना सीखें, बी काइंड टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, डोंट सिट एंड वेट फॉर द वर्ल्ड टू बी नाइस टू यू। अगर आप अपने आप के साथ अच्छे होते हैं ना, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
11: Sneakers, Kanjivaram Sari, or Vahi Electrifying Vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
12: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
17: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: याद रखिए, डर आपको अच्छे काम करने से रोक सकता है, लेकिन इस डर से आगे कैसे बढ़ें?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में ना बॉम्बे की लोकल ट्रेन में एक बहुत बुरा हादसा हुआ। दो लोग गेट पे खड़े थे चलती ट्रेन में और बारिश हो रही थी। एक ने कहा दरवाजा बंद करते हैं, दूसरे ने कहा नहीं करते। झगड़ा हुआ, लोगों ने उनको अलग किया। एक बंदा गया, उसके पास चाकू था, वो आया, उसको दूसरे वाले को खून कर दिया। ये सारी चीजें होती हैं, पढ़ते हैं आप, आपको ऐसा लगता है कि कैसे हो रहा है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको अलग पहली बार किया था, लेकिन जब वो बंदा वापस चाकू लेके आया और जब वो उस पे वार कर रहा था, उस समय लोगों ने वीडियो बनाया, हेल्प नहीं किया। एक शायद सोच ये है कि इसके पास चाकू है, मुझे भी मार सकता है, शायद इस वजह से लोगों ने इंटरवीन नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग थे ऐसा सिचुएशन अगर हो, क्योंकि हो कुछ भी सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, जब मैं उस लोकल ट्रेन में हूँ मैं क्या करूँ उस वक्त?
4: अगर इतने सारे लोग थे तो आसानी से एक व्यक्ति को ओवरपावर कर सकते थे। फियर ना,
3: हाँ,
4: तो फियर का संस्कार है, बट फोन निकाल के उसको रिकॉर्ड करना, ऑफ कोर्स, बट मे बी ये पर्सपेक्टिव से भी रिकॉर्ड हो रहा है कि उसको प्रूफ की तरह दिखाना है, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए रिकॉर्ड हो रहा है तो वो इंटेंशन ही पूरी तरह से गलत है। बट फियर, तो वो फियर हमारी अपनी स्ट्रेंथ हमें यूज करने नहीं देता ना, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि मेरे साथ नुकसान होगा। अगर कोई अकेला होता तो हो भी सकता है, लेकिन इतने सारे लोग अगर इकट्ठे थे वो इजीली उस व्यक्ति को ओवरपावर कर सकते थे, बट फिर वो यूनाइटेड होकर करना पड़ता है ना।
3: तो इसके बाद ना मैंने कई लोगों से पूछा कि आप होते तो क्या करते। आप होते, कुछ लोग थे बिल्कुल मैं हेल्प करता, और कुछ लोग बिल्कुल चांस ही नहीं, भैया मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को कौन देखने आएगा। तो when we are divided as a society in one small little thing,
4: yes,
3: how do we bring people together for a good cause?
4: Divided to hamesha honge kyunki har ek ki soch alag hogi. It's not society, aapke ghar pe bhi har ek ki soch alag hai.
3: Bilkul.
4: तो क्योंकि दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते किसी भी एक चीज के बारे में, दो लोग एक जैसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि दोनों के जो इंटरनल संस्कार रिकॉर्डेड हैं, आप हर सिचुएशन को उसी नजरिए से देखेंगे। तो नो टू पीपल एक जैसा सोचेंगे हमेशा। हाँ, कोई चीजों पे हमारी सोच मैच कर सकते हैं, कोई पे नहीं, क्योंकि वो हमारे संस्कारों पे डिपेंडेंट है। तो इकट्ठे आना फॉर अ गुड कॉज डजंट मीन कि हमारी सोच एक जैसी है हर टॉपिक के ऊपर। इट जस्ट मीन्स हमारे पास एक प्योर इंटेंशन है। सोच अलग होगी लेकिन एक प्योर इंटेंशन है कि हमें ये अच्छा काम करना है। अब वो काम करते समय हम सबकी सोच अलग अलग होगी, डिफरेंसेस भी आएंगे, मतभेद भी होगा।
5: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आप अपने किसी रिलेशनशिप में दुख या इमोशनल पेन महसूस करते हैं? तो सुनिए इस सिचुएशन को लेकर ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी क्या कहती हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, हम जब से शो कर रहे हैं कई लोगों के सवाल आते हैं, हमें भेजते हैं, वो ज्यादातर मैं देखता हूँ जो सवाल होते हैं ना वो रिलेशनशिप पे होते हैं कि आई कांट गेट ओवर हर, उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, और वो बहुत परेशान रहते हैं इसके चलते। ऐसे मैं देखता हूँ कि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा दुख देता है। ऐसे केस में क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों को?
3: रिलेशनशिप दुख नहीं देता है, उस रिलेशनशिप में हम कैसा सोचते हैं वो हमें दुख देता है। तो जितना हम खुद को एनर्जाइज करेंगे, हमारे लिए दूसरों के साथ एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, झुकना, क्षमा करना, लेट गो करना, वो इजी हो जाएगा। इट्स लाइक शरीर है, अगर वो स्टिफ है तो आप छोटा सा थोड़ा भी कुछ नहीं उठा सकते, क्योंकि आप बेंड ही नहीं कर सकते। बट हमने कभी एक्सरसाइज की नहीं तो हम बेंड नहीं कर पा रहे। अब अगर हमें झुकना पड़ गया तो दर्द ही होगा क्योंकि हम स्टिफ है। इसका मतलब ये नहीं झुकना मुश्किल है, इट्स जस्ट दैट मैंने कभी झुका नहीं, तो थोड़ा सा भी बेंड किया तो इधर मोच, उधर दर्द, उधर हो गया। अगर रोज थोड़ा सा बेंड करेंगे, इसका मतलब रोज अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे। अगर हम कोई भी ऐसा तरीका अपनाएं जिससे मन की ताकत रोज बढ़ रही है, तो फिर झुकना, लेट गो करना इतना आसान होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि झुके, क्योंकि वो झुकना इतना नेचुरल हो जाएगा। अभी आप स्ट्रांग है, आप झुकेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कोई पहली बार झुकेगा तो बोलेगा मैं झुका, मैं तीन बार झुका। जैसे रिश्तों में भी हम बोलते हैं 3 times I was the one who kept quiet, 3 times, वो बहुत काउंटिंग चलती है। वो काउंटिंग इसलिए क्योंकि हर बार दर्द हुआ। तो कुछ अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस बनाइए, रोज सुबह थोड़ा सा टाइम माइंड की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए दीजिए, कॉन्टेंट ध्यान से कंज्यूम कीजिए जो आपके मन के अंदर ये दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपकी शक्ति को घटा रहा है, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रात को समय पर सोइए और सोने से पहले कुछ अच्छा डालकर अंदर सोइए, क्योंकि वो अगले 6-8 घंटे आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। सुबह से भी ज्यादा ना रात का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मेजॉरिटी लोग रात को सोने से पहले फोन के साथ बैठे और फिर बैठे में प्रॉब्लम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा कंज्यूम किया, अगले 6-8 घंटे वो आपकी सबकॉन्शियस में जाएगा इन डीप स्लीप, वो आपके संस्कार बनता जाएगा। जैसे हम कहते हैं संग का रंग संस्कार, आजकल हमारा सबसे बड़ा संग का रंग हमारा फोन है, उससे हम जो कंज्यूम कर रहे हैं हम पर रंग लगता जा रहा है, हमारे संस्कार बदलते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी माइंड की फिटनेस के लिए ये छोटी छोटी चीज करेंगे ना, फिर वही व्यक्ति होगा, उनकी वही नेचर होगी। लेकिन आपके लिए बेंड करना, एडजस्ट करना, और अगर अलग हो गए तो प्यार से दुआएं देके आगे बढ़ना, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये इट इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट माई फिटनेस।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
3: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: कंडीशंस अप्लाई।
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे। टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
14: Free entry.
15: One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar, September 27th. At Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit IAWEA.US.
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
17: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
17: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
20: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
21: 13 सितंबर रविवार
20: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
22: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: LGBTQ+ कम्युनिटी को लेकर एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: रिलेशनशिप और जब परिवार की बात आती है तो मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक महिला है उसमें से और एक लड़का है, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मेल या फीमेल, तो वो LGBTQI कम्युनिटी से हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हमको दिक्कत इस बात से नहीं कि परिवार की सोसाइटी हमको एक्सेप्ट नहीं करता, हमारे परिवार वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पहले तो हमको बड़ी मुश्किल लगती है, हमको बाहर आने में बहुत टाइम लगा, डर लगा, और एक दिन हमने एक्सेप्ट किया कि हम ऐसे हैं। उसमें बरसों लगे, सालों लगे ये हिम्मत जुटाने में, अपने आप को एक्सेप्ट करने में, और उसके बाद डिनर टेबल पे जो कॉन्वर्सेशन होती है वो इस बारे में होती नहीं, वो इसको इग्नोर करते हैं, वो मुझे रिजेक्ट करते हैं रोज। तो जब रोज रिजेक्शन मुझे अपने परिवार वालों से मिले, मैं इस रिश्ते को कैसे ठीक कर सकता हूँ?
3: सबसे पहले परिवार को भी ये समझना चाहिए और समाज को भी ये समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, हम दो चीजों से बने, ह्यूमन एंड बीइंग, तो जो व्यक्ति है वो बीइंग है और जो शरीर है वो ह्यूमन ह्यूमस मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी का शरीर है ना, मिट्टी में मिल जाएगा, हम सबने देखा है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो पांच तत्वों से ये शरीर बनता है और वो पांच तत्वों में मिल जाता है। व्यक्ति शरीर नहीं है, व्यक्ति उस शरीर को चलाने वाली शक्ति है जो सोचती है, जो फील करती है, जो उस शरीर के थ्रू बोलती है, जो उस शरीर के थ्रू अपना कर्म करती है। वो शरीर खत्म हो जाएगा, व्यक्ति खत्म नहीं होगा, विच मीन्स द बीइंग, दैट बीइंग इज एनर्जी, वो एनर्जी खत्म नहीं होती। तो वो जो व्यक्ति है आपके सामने, उसकी ड्रेस आपकी ड्रेस से अलग है, व्यक्ति अलग नहीं है। गलत का तो खैर आउट ऑफ द क्वेश्चन है, व्यक्ति अलग नहीं है। इस शरीर से पहले वो किसी और कॉस्ट्यूम में थे, इस कॉस्ट्यूम के बाद वो किसी और कॉस्ट्यूम में होंगे। सिर्फ कॉस्ट्यूम हमारे अलग अलग हैं। तो किसको रिजेक्ट कर रहे हैं हम किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? तो कॉस्ट्यूम को समझ लेंगे कि ये कॉस्ट्यूम है, उसके अंदर बैठी हुई एनर्जी बिल्कुल हम और वो सेम है, संस्कार अलग अलग है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: कंडीशंस अप्लाई.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
13: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
14: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
14: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
15: New Jersey is where we're going to be.
16: Sneakers, Kanjivaram Sari, or Vahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
17: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
18: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
17: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
18: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
17: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.

नॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप LGBTQ+ कम्युनिटी से हैं और लोगों के जजमेंट से परेशान हैं, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे बनाए रखें? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: कई बार क्या है कि बहुत जो बड़े लोग होते हैं समाज में, जो माने जाते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, वो कहते हैं कि रोग है।
3: ये क्या है?
2: रोग है, डिजीज है, इसको फिक्स करना चाहिए, इनको कहीं लेके जाओ। तो बहुत सारे लोग फिर उसको मानने लगते हैं, तो और रिजेक्शन मिलता है। तो ऐसे केस में मैं अपने आप से, अगर मैं हूँ उस
3: कंपैशन, उनके ऊपर रहम की भावना, वो मुझे नहीं समझते, उनकी गलती नहीं है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी, खुद को आप समझेंगे ना, तो फिर दूसरे की बोली हुई चीज को समझ, अगेन इट्स लाइक द नर्स एंड द डॉक्टर, वो समझ जाएगी कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वो किस सोच से बात कर रहे हैं। लोग हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ कॉस्ट्यूम की थोड़ी बात है, सारा दिन में भी हमें कितनी सारी रिजेक्शन मिलती है फॉर अलग अलग चीजों के लिए। वो रिजेक्शन सामने वाले का संस्कार है, मेरी आइडेंटिटी की वजह से नहीं है, वो उनके संस्कार की वजह से है। ये तो हमेशा याद रखना है कि वो रिजेक्शन उनके संस्कार की वजह से, उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से है, इट्स नॉट अबाउट मी। और हम उनके सामने हाथ पकड़ के क्यों खड़े हुए हैं कि मुझे कुछ दो? हाँ। क्यों ना हम उनको दें? आप दो, आप अनकंडीशनल लव दो सबको, आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दो, जितना आप सबको देंगे आपका बढ़ता जाएगा। यही तो हमने सीखा, हमें चाहिए प्यार, चाहिए रिस्पेक्ट, चाहिए चाहिए नहीं, प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है। जितना देते जाएंगे सबसे पहले हमें ही मिलता है जब हम दूसरे को दे रहे हैं। तो खड़े ही नहीं होना ऐसे कि मुझे चाहिए, चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ देना है। देते जाओ, सबसे पहले आपका बढ़ता जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
9: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ऐसी कौन सी बात है जो आप अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए गाइडेंस की तरह अपना सकते हैं? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: जाने से पहले मैंने शुरुआत बात की थी टीचर्स डे के लिए, और जाते वक्त मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप अगर मुझे, हमें और जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको कुछ दो तीन चीजें आप कहना चाहते हैं तो क्या होगी?
3: सारे रिश्ते निभाने हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सबसे पहले अपना खुद के साथ रिश्ता। दूसरे मेरा ध्यान रखें, उससे पहले मैं खुद खुद का ध्यान रखूं। दूसरे मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे प्यार दे, उससे पहले मैं खुद खुद के साथ समय बिताकर खुद को रिस्पेक्ट दूं। हम आज इतनी आसानी से कहते हैं मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो क्या हम खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अगर आज दूसरा हमें कहे मेरे पास टाइम नहीं आपके लिए, तो हम कहेंगे डिसरिस्पेक्ट कर दी। सबसे पहले तो हम रोज अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, यू नो, ये लाइन। खुद को रिस्पेक्ट करें, खुद के लिए टाइम निकालें। सब लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, मेरे लिए सही क्या है वो देखना है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना शुरू करें। ध्यान मतलब कॉस्ट्यूम शरीर का नहीं, वो तो करते हैं, अपना ध्यान रखना शुरू करें। बहुत कुछ हो रहा है समाज में और बहुत कुछ होगा, लेकिन उस सबके बीच मुझे सब बातों को क्रॉस करते हुए अगर स्ट्रांग रहना है तो मुझे अपना ध्यान रखना होगा। तो अपने लिए रोज सुबह 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने आप के लिए निकालेंगे, थोड़ा सा खुद को एनर्जाइज करेंगे, बड़ी बड़ी बातें आएंगे लेकिन आप उसको बहुत सहजता से क्रॉस कर लेंगे। तो खुद से प्यार करना है।
2: वाओ, थैंक यू सो मच सिस्टर।
3: शुक्रिया
2: गिविंग अस दिस टाइम। शुक्रिया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Truly one of the best songs this year. Pathaan ke is gaane ne pagalpan machaya. It stayed on number 1 for so many weeks. Lekin ab nayi filmon ke aate khisak raha hai thoda thoda. This week it's on number 7 from number 4 last week. And my name is Suren and this is the Mirchi Top 20. And ye jo do dost the mere, Ketan jo khud ek radio jockey reh chuka hai and Yashraj Mukhate, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीस टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

I hate it so much that I actually love it. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो मुकेश जी।
2: कौन?
1: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
2: नहीं हो पाया भाई?
1: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
2: हाँ नहीं हो पाया
1: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
2: हाँ
1: सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है क्या मजाक ही क्या है ये?
1: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई।
1: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
1: सर वो
2: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
1: नहीं सर
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
1: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
2: क्यों नहीं हो पाया?
1: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
2: है?
1: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
1: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
2: क्या करा दूँ
1: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू?
1: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
2: गुस्सा ना करूं नई गाड़ी थी हमारी।
1: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस लगाया
2: उसमें
1: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है
2: ग्रीस कितने का 5 रुपए का लगाया आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में।
1: अच्छा सर
2: मुझे चाहिए अपनी वापस।
1: सर आप इतना गुस्सा ना करें
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
1: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
2: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए।
2: कुकड़ू कु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
8: I am not going to bed with you ever again.
7: But why? What did I do?
8: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
7: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
8: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
7: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
8: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
7: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: Conditions apply.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
14: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
15: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
14: बाइंग अ होम आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
15: ऑलरेडी अ होम ओनर ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
16: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
17: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
16: Wait, they can see us on Sunday?
17: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
18: Free entry.
11: One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
18: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
19: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
20: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
19: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Yeah.

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था एंड द बेस्ट पार्ट they both actually look good together. But दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया? जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor and I've always admired his work and ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And क्या है कि प्रीतम दा ने जो गाना बनाया है उसका जोन, उसकी वाइब एक और गाने से काफी मिलती जुलती है। बट उससे पहले आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हां मैं गलत वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन।

0: that room.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: क्या आपको health insurance, Medicare या government assistance programs को लेकर कोई सवाल है? तो United Healthcare proudly announce करता है हमारा नया Edison Asian Resource Center की opening.
13: ये center conveniently located है 561 US Highway 1 Edison, Wick Shopping Mall के अंदर.
12: यहाँ आपको अपने healthcare benefits और coverage ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी.
16: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
17: 13 सप्टेम्बर रविवार
16: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
18: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
18: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
19: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
18: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन.

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो भूल भुलैया 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइन, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी, तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को, ये तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। Alright, so now the number one song, मिर्ची टॉप 20 पे we have a new king। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे। Riding the Nostalgia Express, तनिष बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Surin.
2: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
14: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
10: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: कंडीशंस अप्लाई। Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th. At Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
12: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
14: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
15: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
14: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
16: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
17: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
16: Wait, they can see us on Sunday?
17: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
20: Tera kya hoga, Kalia?
21: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
20: Ab mirchi kha.
22: Radio Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: कंडीशंस अप्लाई.
7: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
8: I enjoy using inefficient and complex software, मामा.
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
10: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
12: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
11: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
12: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई। मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars.

0: Us now at Raj Jewels.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
3: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
4: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: कंडीशंस अप्लाई।
6: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: गोली मार भेजे मैं।

0: ગુડ મોર્નિંગ, સાંભળી રહ્યા છો મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. એક પ્રશ્ન કે જે દરેકને જીવનમાં એક વાર તો થયો જ હોય કે ભગવાને મને આપ્યું તો છે ઘણું બધું, પણ બધું જ કેમ નથી આપ્યું. થાય થાય, બધાને આ પ્રશ્ન થાય. એમાં એવું છે ને કે કુદરતે શેરડીને મીઠાશ આપી પણ ફૂલોની સુંદરતા ના આપી. કુદરતે સોનાને કિંમત આપી પણ સુગંધ ના આપી. કુદરતે ચંદનને સુગંધ આપી પણ એને પણ ફૂલ ના આપ્યા. કમળને સુગંધ આપી, સુંદરતા આપી, પણ એને જગ્યા કઈ આપી? તો કે કીચડ. કુદરતમાં બધાને બધું મળતું જ નથી. એટલે જો તમને એવું હોય કે હું એકલો જ રહી ગયો અને બાકી બધા જ લઈ ગયા, તો એવું નથી. સબકો સબ કુછ નહીં મિલતા. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ. ગુડ મોર્નિંગ. આઈ હોપ કે આ નાનકડી વાતથી તમે દિવસમાં કેવી રીતે ખુશ રહું એ શીખી શકો.
1: हेलो,
2: मिल गया मैडम. आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं. आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर. जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था. जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के. आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है.
1: क्या तुझे पागल लग रहा
2: है? नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे.
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू. हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है. चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो. हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी. मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया. आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार. आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ. चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा. नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
8: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर.
7: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी, ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
11: कंडीशंस अप्लाई.
12: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th. At Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
13: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज.
11: the king of mortgage industry.
15: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
16: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
19: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
20: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
19: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
21: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
22: एक ही होता है.
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है हम

0: टी वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतू राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
3: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।

0: Mirci. Iskaba la puskaba la sakabana. Rabala. Burga, burga. La virva la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस कोई लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब नहीं।
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो में।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: कंडीशंस अप्लाई।
12: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन। इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद जोशी। लाइट अप द स्टेज एट द मिर्ची हॉट माइक टैलेंट शो, एंड द लिटिल वंस अ डैजलिंग मैजिक शो एंड अ फ्री आई चेकअप। मार्क योर कैलेंडर, सितंबर 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
13: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
14: Plus, grooms के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें, 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: The mortgage industry has changed over the years, but our honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
4: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: कंडीशंस अप्लाई.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
9: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.

92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: कि जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा?
10: जे तू जसनीत नू वापस नाना लेके आया पुत, तो मेरा भी मरीदा मुंह देखेगा।
9: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाएंगे? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La birba, la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
9: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: कंडीशंस अप्लाई।
11: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th. At Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit IAWEA.US.
12: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
14: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
15: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
14: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
15: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
16: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
17: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
16: Wait, they can see us on Sunday?
17: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210. 0800-300-3000.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
20: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
19: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
21: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
22: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: निहाल सिंह नु बंगाली कुड़ी नाल किवें होया प्यार?
14: यू बॉयफ्रेंड?
15: नो बॉयफ्रेंड।
14: सेम, नो गर्लफ्रेंड।
13: की निहाल बंगाली कुड़ी दी सच्चाई फड़ पाएगा? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2, releasing on 11th September, starring Gippy Garewal, Shehnaz Gill, directed by Navneet Singh, produced by Gippy Garewal, Ravneet Kaur Garewal, Shrikant Mohta and Mahendra Soni.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
5: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: Conditions apply.
7: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
8: Sneakers, Kanjivaram Sari, or Vahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwani.
9: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
11: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069.
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest countdown of the week. यानी गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं. इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है. काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे. सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी. कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप. शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है. गाने का नाम है वो आएगा. ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना. अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में. वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: सारे कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेस को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे. क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है, इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
4: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: कंडीशंस अप्लाई।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ dialogue ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
16: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
15: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.

0: है मेरी।
1: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल
2: कसेट क्लासिक।
1: हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज. साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से. आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी. आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है. एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था. एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर. एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा. एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था. ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत सिंपल था. कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था. ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है. बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही है, उतना ही है और वही काफी था. एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया. दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील. एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर. तो अपने रेडियो से आज की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन. वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना. दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना एडिट ऑफ डेट बनी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gana Gana Mein Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanek on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेगा और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग, राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे, गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
4: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: कंडीशंस अप्लाई.
6: Free entry.
7: One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th. At Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
10: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
11: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज. इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ.
12: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ. टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा. कॉल 9549188589.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
15: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
16: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है.
17: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्प्रेरी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Rana, Indie Top 10, Kanika ke saath. On Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, mera handle is at RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs, kuch aise bhi gaane hote hain which deserve a special shout out. Aise gaane ke bare mein baat karne wali hoon. It's called
2: Boom Shakalaka, tere bandook shakalaka.
1: गाने का नाम है बूम शाकलाका एंड आई एम श्योर ये गाना ये फ्रेज आपने जरूर सुना है. गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा बिकॉज इट्स एवरीवेयर. ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है. वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना. हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के से पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है. छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट. कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट. बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया. उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन. हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं पर पढ़ते सारी शायरी जॉन इलिया जैसी है. इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे. पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकालाका. इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस. ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकालाका. अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनक.

The song is a perfect concoction of Krishna, Danda Neoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli baar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप कराए उड़ी उड़ी. दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा. गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका. एंजॉय. नंबर 2.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तो हका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई। मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
14: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
15: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
17: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है. Because every song on this list is actually a time machine. एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे. कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था. शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है. यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है. और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है. कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है. इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर.

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊं कि सिर्फ एक्शन ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूं। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है। मैं यार करूंगा, आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ Change myself. I have to take a risk.
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाय ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: दिमाग खराब कर रखा है रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार कमाल कर दिया आपने जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के सारी एल्बम आ गई है क्या फोटो खींचे यार दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है सबके फोटो अजीब से आए यार सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है सतीश चंद का एक बटन है उसकी शादी के फोटो में कर दिया यार सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ मतलब मैं पागल हूँ आपने एल्बम देखी है एल्बम देखी है
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार तूने किया क्या ये
1: किसी का
2: कपड़े गायब है एक आदमी का मैं खड़ा हूँ अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या कौन सा लेंस लगाया एक तो बता ये बदमाशी करते हो कपड़े
1: नहीं नहीं नहीं
2: नहीं नहीं मैं कल को
1: फोटो खींचे
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से मैंने शेरवानी पहना की थी शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं सर क्या बात चुन के बनाया है
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया मेरा बेटा खड़ा है कपड़े नहीं है बहू उसका चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है वो खड़ा है जितने बाराती आया है सबके कपड़े गायब है ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आप किया लो ऐसी कोई बात नहीं
2: यार इतना बुरा लग रहा है हर आदमी के प्लेट में हर आदमी के हाथ में प्लेट है कपड़े है भी
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे आप उसको सही करिए यार
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
7: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: गहने खरीदने की सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर बाय नाउ एंड पे लेटर आरके ज्वेल्स
11: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
12: कंडीशंस अप्लाई।
13: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
14: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
14: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन।
15: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
16: आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
17: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
16: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: बेटा
12: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
20: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
21: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
22: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
23: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
22: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
23: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
22: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
24: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
25: Number 70.

नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानु, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी, और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, कर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद, कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।

एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट्स चलते हैं तो नॉस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम। Here is Aankh Mare from Simba. Top 20 Rewind.

0: Talk them all.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
11: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
12: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
13: संडे सितंबर 27th 4 PM, जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com.
14: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
15: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
16: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
17: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
18: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
19: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
20: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
17: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
21: तेरा क्या होगा कालिया?
22: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
21: अब मिर्ची खा।
23: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
24: नंबर 15।

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

0: बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लवर वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गेव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन।
1: नंबर 14।

0: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल 4, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे, दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
1: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं डिजर्व करता था। मुझे बड़ी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो हम 3 दिन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया, मैं यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा। तो बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
0: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर ऊंचा लंबा कद। बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान। ये गाना है आइकॉनिक, दिस वन इज छैया छैया फ्रॉम दिल से। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
8: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: कंडीशंस अप्लाई।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर्स टीवी पे जाते थे और फिर ओटीटी पर, लेकिन मिर्जापुर ने फ्लो ही उल्टा कर दिया। डिजिटल स्क्रीन्स पर जन्म लेने वाली दुनिया ने मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर कर लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुकी है। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया, एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है विच इज ऑन नंबर 8, अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना। नंबर 8।

0: Sachin ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabeez wala murga.
1: Mirchi murga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर. वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है. मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: मैं कहा गुस्सा ना करूं. नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया. उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें.
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें. हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ. मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में. बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए. गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
8: I am not going to bed with you ever again.
7: But why? What did I do?
8: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
7: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
8: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
7: Yes, come soon. Honey!
8: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
10: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स
11: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
12: कंडीशंस अप्लाई.
13: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
14: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
14: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन.
15: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
16: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
17: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
16: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस.
18: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा. बैक टू बैक गाना सुनेगा.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
19: Number 7.

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, VFX होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना, और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, उसमें उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। देयर हैव बीन सॉन्ग्स लाइक चल वहां जाते एंड सोचना सके जो अरमान ने गाए, एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। देन देयर इज अ बेस अबरिया फ्रॉम MS धोनी जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। सो दीज आर क्रिएटिव कॉल्स। और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है। अपने भाई से प्यार करना एक बात है, लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी, और इस गाने की किस्मत देखिए। अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया, और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए, लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन। नंबर 5।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
9: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
10: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
11: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
15: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
14: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
18: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 4।

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस फिल्म के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेज पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं, पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई। मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: This hour is brought to you by Raj Jewels.
12: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
13: Number 2.

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूं, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। स्टिल रेनिंग एट नंबर 1, दिस इज तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना। नंबर 1।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सरीन, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और बड़ा ही एक अमेजिंग सा वाक्या हुआ। ऑफिस से घर जा रहा था, गाड़ी लेकर नहीं आया था, तो एक ऑटो बुक किया। ऑटो में बैठा तो उन्होंने दिख गया उन्हें कि रेडियो मिर्ची से हूँ, क्योंकि बुक वहीं से करी थी। तो कहने लगे, अरे अच्छा आप आरजे हैं? उसके बाद अंग्रेजी में बात करने लगे। मैंने बोला, अरे अच्छा जी, तो बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है और मेरे पास ये डिग्री हैं। डिग्री गिनाने लगे। मैंने बोला, क्या हुआ फिर आप ऑटो चला रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा, जिंदगी के हालात हमें यहाँ पे ले आए हैं छोटे, अब क्या सुनाएं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी। ज्यादा तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन लाला माधव राम जौहर साहब का एक शेर याद आ गया मुझे उनकी बात सुन के। कह गए कि जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ऐ आसमान मैं भी कभी आफताब था। आफताब बोले तो सन है ना। जर्रा समझ के यूं ना मिला मुझको खाक में, ऐ आसमान मैं भी कभी आफताब था। तो कई बार जब आप प्रिज्यूम करते हैं कि कोई इंसान क्या हो सकता है, अगर आप उसकी जिंदगी को ना जानते हो तो प्रिज्यूम ना ही करना बेहतर है। रेडियो इंडो मिर्ची ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।